107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि है। तदनुसार 10 जून 2026 बुधवार का दिन है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति

0: सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:05 हो चुके हैं। आपको बताते हैं दिन भर में हमारे कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 का समय होगा चिंतन का। 6:15 पर आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:45 का समय फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। 7:20 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार शुरू। 8:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम का। इसके पश्चात 9:00 राजस्थान जयपुर से प्रसारण होगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार का। 9:10 पर आप सुन पाएंगे देशगान। 9:15 का समय कार्यक्रम साहित्य सुगंध का। 9:30 पर आप सुन पाएंगे चित्र संसार, किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम चित्र संसार 9:30 पर। 10:00 आकाशवाणी मुंबई से प्रसारण होगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 12:00 आप सुन पाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के साथ। 1:00 जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन। 2:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार। और 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने। हमारी सायंकालीन

छह बजे दिल्ली से प्रसारण होगा हिंदी में समाचार का, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 6:10 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत, 6:20 पर संस्कृत में समाचार, 6:30 का समय आकाशवाणी जयपुर से प्रसारण का, जिसके अंतर्गत पहले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इसके पश्चात 7 किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, 8 आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, 8:45 पर दिल्ली से प्रसारण होगा समाचार संध्या का, 9 आप सुन पाएंगे न्यूज एट 9, 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत और 9:30 पर दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसके पश्चात 10 आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत, 10:30 का समय होगा सुगम संगीत का, रात्रि 11 दिल्ली से हिंदी में समाचारों और

विवरण। और अब समय है चिंतन का। चिंतन के लिए हम विचार लेते हैं और आज का विचार है कि अगर हारने से किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे जीतने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। श्रोताओं, इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि जीत के साथ हार ठीक उसी प्रकार से जुड़ी है जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आप उसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं।

उसी प्रकार का परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। जीत के लिए जो कुछ वांछनीय होता है अगर वो कार्य हम करते हैं तो निश्चित रूप से जीत हमें प्राप्त होती है। इसके विपरीत जिन कार्यों से हार सुनिश्चित होती है उन कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से हार ही प्राप्त होती है। और ऐसे में एक बात ये भी याद रखने की होती है कि जीत और हार जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो ऐसे में जीवन में अलग अलग समय के अलग अलग पड़ाव भी होते हैं, कभी जीत कभी हार। तो ऐसे में ये मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति अगर जीवन में किसी भी कार्य को जीत में बदलने के लिए प्रयास कर सकता है, हो सकता है उसको हार मिले, लेकिन अगर वो निरंतर उस कार्य में सुधार करते हुए उसको लगातार करता है तो निश्चित रूप से उसको जीत प्राप्त होती है। ये बातें जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे करते हैं तो ये बातें आप भी जानते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं बहुत बार सुना होगा, आपको भी लगता होगा कि ये कोई विशेष बात नहीं है, ये सब बातें हम जानते हैं और बचपन से सुनते आए हैं। श्रोताओं, हम जानते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन उसके पश्चात भी बहुत सी चीजें हम मानते नहीं। जानने में और मानने में फर्क इतना ही है कि अगर किसी कार्य को हम संपादित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कुछ आवश्यक है उसको करते हुए जब हम चलते हैं तो उसको हम मानने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जानते हुए कि हर कार्य के लिए मेहनत की आवश्यकता है, सही दिशा में सही तरीके से और सही सोच के साथ मेहनत, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर इसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तो जो परिणाम हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए जब हम एक बात अलग अलग माध्यमों से पढ़ते हैं सुनते हैं और जब उस पर मनन करते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरी तरह से उतर जाता है, और जब कोई बात पूरी तरह से जीवन में उतरती है तो वो सिर्फ जानने तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसको मान लिया जाता है, और जब किसी चीज को मान लिया जाता है तो उसके पश्चात उसका परिणाम भी प्राप्त होता है। आपने अक्सर अपने जीवन में देखा होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने अपनी राय भी दी होगी किसी व्यक्ति को कुछ करने की, और उसके पश्चात आपने ये उत्तर भी सुने होंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश जारी है, जल्दी ही इस प्रकार का कार्य हम करेंगे, बदलाव लाएंगे, लेकिन उसके पश्चात भी नतीजा वो का वो। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को संचालित किए जा रहा था

प्रकार से संचालित किए चला जाता है। आपकी दी हुई राय को वो सुनता है और उस पर बिना गौर किए ठीक उसी प्रकार से चलता है जिस प्रकार से उसे अपने दिमाग के अनुसार चलना होता है। तो ऐसे में जानने और मानने में फर्क इतना ही है कि जब हम किसी बात के बारे में कभी भी किसी भी समय गौर करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और सोच लेते हैं कि अब ये करना है, उसी दिन से हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। और यही उद्देश्य रहता है हमारे इस रोजाना के चिंतन का। चिंतन में इतना ही, और अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: मेरा तू प्यारे हनुमान चुटकी
1: राम राम रतन छोड़ खटपट तेरे खट जाएंगे संकट झटपट।

श्रोतों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:45 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है मुकेश की, फिल्म का नाम आनंद, गीत लेखन योगेश का और संगीत सलील चौधरी।

किशोर कुमार आशा भोंसले की युगल आवाज में अभी आप सुन रहे थे आंसू बन गए फूल, इस फिल्म का गीत जिसे लिखा गोविंद मुनीश ने

अनजाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और अब लता मंगेशकर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जी।

लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलजार ने और संगीत दिया मदन मोहन ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं

अनोखी अदा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, गीत के साथ ही संगीत का ये कार्यक्रम, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हमारे अगले प्रसारण में

और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें

श्रोतों अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:00

30 मिनट हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

0: आपकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन

0: जी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: कर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM चुरू और कार्यक्रम है नमस्कार चुरू। कार्यक्रम में हम आपके साथ अलग अलग विषयों पर बात करते हैं रोजाना, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़ी रहती है। तो ऐसे ही एक जीवन में जुड़ी बातचीत आज के इस कार्यक्रम में आपसे करेंगे, और वो हम करेंगे दोस्त पर, मित्र पर। देखिए, दोस्त मित्र आपके भी निश्चित रूप से होंगे, और शायद ही इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पुरुष, कोई स्त्री होगी जिसका दोस्त नहीं होता। और सिर्फ स्त्री पुरुष की ही बात क्यों करें, अगर हम बात करें जानवर की तो जानवरों के भी आपस में दोस्त होते हैं, उनकी भी दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है। आपने भी देखा होगा कि मोहल्ले में कई कुत्ते एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और अगर दूसरे मोहल्ले का कोई कुत्ता आ जाए तो उस पर एक साथ टूट के पड़ते हैं, यानी दोस्ती उनमें भी होती है। ये दोस्ती का रिश्ता एक अलग सा रिश्ता होता है। बात करें जीवन में दोस्त या मित्र की भूमिका का क्या महत्व होता है। कहा जाता है कि रिश्ते हम जो भी जिन रिश्तों में हम होते हैं वो ज्यादातर हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन मित्रता का रिश्ता हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, हमारे विचारों के अनुकूल लगता है, जो हमें पसंद आता है, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। और मित्र बहुत बड़ा राजदार भी होता है। जो बातें एक व्यक्ति किसी को नहीं बताता, लेकिन वो अपने मित्र को बता देता है, और मित्र उसके उन विचारों को सही तरीके से विश्लेषण करके उसके सामने प्रस्तुत भी कर देता है। बहुत से सही और गलत कार्य जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उनमें भी वो अपने मित्रों से निश्चित रूप से सहायता लेता है, उनसे डिस्कशन करता है। अब कोई गलत कार्य करता है, उसमें मित्र जो है वो उनके जैसा ही होता है, इसलिए वो उसको सही राय नहीं देकर और यही राय देता है कि हाँ, ऐसा कोई कार्य तू सोच रहा है तो कर ले। हालांकि ऐसे में मित्र का ये फर्ज होता है, ये दायित्व होता है कि वो उसको सही राह पर लेकर जाए, सही राय दे। लेकिन मित्र तो जैसा कि हमने कहा, जब विचार मिलते हैं तब ही बनते हैं, तो एक जैसे विचार होंगे तो ऐसी गुंजाइश कम होती है, लेकिन फिर भी होती है। बहुत से दोस्त समझदार होते हैं, और वो दोस्त होते हैं लेकिन उसके साथ हमारे कुछ एक विचार उनसे मेल नहीं भी खाते, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। इसलिए अगर हम कुछ गलत करना चाहते हैं तो उसके लिए वो हमें रोकते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इससे आपको ये नुकसान है, इस प्रकार के नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं, इससे आपकी जो इज्जत है, जो कुछ आपने आज तक कमाया है उसमें आप सब कुछ गंवा सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सी राय जो है वो मित्र दे सकते हैं, और मित्रों की राय जचती भी है। अब बात कर रहे हैं मित्र की, तो जब किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो कोई रास्ता हमें जब दिखाई नहीं देता है, तब एक सच्चा मित्र ही आशा की किरण बनकर हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। मित्र हमारे जीवन में आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक सोच का संचार करते हैं। आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक सोच का संचार इस प्रकार से होता है कि बहुत से ऐसे कार्य जिनमें मित्रों की आवश्यकता है, ऐसे में अगर हम अपने मित्र से बात करते हैं, वो सहज से कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं, आपको जब भी आवश्यकता हो हमें बुला लेना। अब ऐसी बातें जो है कई बार लड़ाई झगड़ों में भी होती है, ऐसे भी

जब भी आवश्यकता हो मैं डंडा लेकर तैयार हूँ तुम्हारे साथ, कभी भी भुला देना। हालांकि ऐसे मित्र जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो अच्छे तब होते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। लेकिन अगर चला के किसी से हम पंगा लेते हैं और ऐसे में मित्र हमें सहयोग करते हैं, तो ऐसे मित्र को हमें सही राय देनी चाहिए कि भैया अपनी सही चीज के लिए तुम खड़े रहो। लेकिन किसी से बिना बात के अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, कोई पंगा लेते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए सहायक नहीं होंगे। इस प्रकार से मित्र अगर सच्चा हो तो वो समझा सकता है। और सच्चे मित्र की यही एक पहचान है कि व्यक्ति जिस सही

वो अगर कहीं से मिल सकती है तो वो मित्र ही होता है। ऐसे में सही और उचित राय देने वाला मित्र सच्चा मित्र होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किसी भी गलत कार्य में भी मित्र का साथ दें, वो गलत है, न सिर्फ हमारे मित्र के लिए बल्कि हमारे लिए भी। तो आज के इस डिजिटल युग में जहां देखते हैं कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ चुका है, तो उसमें मित्रों की संख्या हजारों लाखों में जा रही है, लेकिन वो हजारों लाखों में सिर्फ आंकड़ों के तौर पे ही जा रही है। वास्तविकता ये होती है कि अगर हमारे सोशल मीडिया पे कोई मित्र बना हुआ है, वो अगर हमारे सामने भी आ जाए तो हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हमारा मित्र है। तो ऐसे में वो तो सिर्फ कहने को मित्र होते हैं, लेकिन सही मायने में मित्र वही होते हैं जो हमारे लिए जब कभी भी हमें जरूरत हो हमारे लिए निश्चित रूप से हर समय हमारे साथ खड़े हों। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

आप सुन रहे हैं एफएम चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू और मैं हूं आपके साथ आपका साथी राजीव। साथियों, हम बात कर रहे थे मित्र पर और अब मित्र की कैटेगरी में अगर हम एक ऐसे मित्र को ले जो निस्वार्थ रूप से हमें सिर्फ देता ही देता है, बदले में लेता कुछ नहीं है, मांग कुछ नहीं करता। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा मित्र है, उसको हम मित्र भी कह सकते हैं, सखा भी कह सकते हैं, हमारा संरक्षक भी कह सकते हैं। अब इतने सारे मैंने नाम

उसके बिना हमारे जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने उस निस्वार्थ साथी की, जो बिना कुछ मांगे हमें जीवन में सिर्फ देते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर पेड़ न होते तो क्या होता? ना शुद्ध हवा होती, न ठंडी छा, न मीठे फल, न प्रकृति की हरियाली जो मन को सुकून देती है, और ना ही शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती जिससे जीवन संभव ही नहीं हो पाता। वृक्ष अगर नहीं होते तो क्या तो व्यक्ति ऑक्सीजन के रूप में लेता और क्या वो खाता? यानी बिना वृक्ष के जीवन संभव ही नहीं था। उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा आप कितना अपने आप को सीरियस पाते हैं वृक्ष के बारे में, उसके कटने के बारे में, उसको लगाने के बारे में। ये बातें बहुत जगह आपने सुनी,

बहुत जगह पड़ी, वृक्षारोपण किया गया, इतने पेड़ लगाए गए, फोटो खिंचवाई गई और उसके बाद सब कुछ साफ। उसके बाद वो पेड़ कितने लगे, कितने जीवित रहे, इसका हिसाब किताब कोई नहीं लेता है और ना ही कोई देता है। सिर्फ वृक्षारोपण के नाम पर एक न्यूज़ बना नहीं और उसकी फोटो सेशन हो गई और वहीं पे इतिश्री। अगर ऐसा आप भी करते हैं या जीवन में कभी किया है तो आप गौर कीजिएगा, ये गलत है। आपको अपने जीवन में कम से कम प्रण करके एक दो पेड़ अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई एक पेड़ लगाए, कोई 5 लगाए, कोई 10 लगाए, एक ऐसा छायादार पेड़ जो छाया भी दे और इसके साथ ही साथ शुद्ध हवा भी दे, यानी एक ऐसा प्रयास जो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए, उसके बारे में विचार कीजिए। और अब जो समय आएगा जिसमें बारिश निश्चित रूप से होगी, चारों तरफ हरियाली हमें दिखेगी, तो ऐसे में प्रण कीजिए कि 1 2 3 4 जो भी हमारा सोच के अनुसार

0: का घर सूर्य घर बन जाता है। माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
1: हर घर

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तन

0: नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम

या और कोई भी आपनों मनोरंजनात्मक कोई खर्च होवे तो भी के लिए 30% पैसा अगर आप बचा के रखा तो बहनों जब भी आप ना जरूरत पड़े तो आप काम में ले लेवा। इसके अलावा 20% जगह अपनी मासिक आय को 20% हिस्सों है वो आपने भविष्य के लिए निवेश करा, आपने खाते में जमा करावा तो बहनों आपनो आगे आने वाला कोई भी आकस्मिक खर्चा जद होवे आपने आकस्मिक जरूरत पड़े तो आपनो मन है जिको संतुष्ट रहे के आपने कने थोड़ा पैसा है जिका बचाएड़ा है आपनो कोई भी जिको काम है वो आप आराम से निकाल सका। हाँ, इसके लिए कई सरकारी योजना भी चल रही है, बाकी भी आप जागरूक रह के जानकारी रखा भी के दौरान भी आप पैसा बचा सका। हाँ, जिया सुकन्या समृद्धि योजना है और आप पोस्ट ऑफिस के मायने भी बचत करके भी से भी आपनी जी की आय है वह आप सुरक्षित रख सका। हाँ, तो बहनों कहने को मतलब वही है कि शुरुआत में ही आप समझदारी से काम मिले।

कि आपनी जी की आय है बिने कुछ आपने भविष्य के लिए बचानी शुरू करा और ई सगली बातों को ध्यान आपनी भेणा रखे कि घर को जो को बजट है वो बना के चला कि ई महीने के महीना आपने कितना पैसा बचाना है और ए छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखा कि कोई भी अनावश्यक खर्चो आप नहीं करा। और बहनों शुरू से बच्चा ने भी याल की आदत घाला कि बच्चा स्कूल के माइन तरह तरह की चीज़ा देखे और कोई भी वह छुट्टियाँ के माइन बच्चा खेल रहा जावे तो कपड़ा भी अनावश्यक खरीद ले वे या कोई खेलने को सामान है वो खरीद ले वे और वो आपा घर के माइन लिया के दे देवा बच्चा ने और वह एक दो दिन में या 15-10 दिन में भी सामान ने तोड़ फोड़ देवे तो बहनों वह एक तरह से आपने लिए अनावश्यक खर्चा हो जावे। बच्चे ने आपा अगर बड़ा हो गयो तो समझा सका, छोटा बच्चा है वह अगर जिद करे तो कोई बाकी फरमाइश है जिसकी बहनों आपा ने पूरी करनी भी पड़े। लेकिन ध्यान रखा आपा भविष्य के लिए कुछ निवेश शुरू से ही करनो शुरू कर दें ताकि आपने बच्चा का जिसका भविष्य का खर्चा है बाके लिए आपने चिंतित नहीं होना पड़े। बहनों बातचीत तो आप और भी कर सें, एक बार फिर बीच में करा दें थारो मनोरंजन।

किशोर कुमार को आप सुन रहे हैं फिल्म नमक हलाल में। इस गीत को लिखा है बप्पी, इस गीत में संगीत है बप्पी लहरी का और शब्द रचना है प्रकाश मेहरा की।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

लता मंगेशकर के नसीब फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: सृजन कर रहे हैं। जी जी,
1: तो हम इस भाव से आए तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, ये

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। आपको बता दें कि इस 100.7 एफएम के जरिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम युववाणी, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं अब आपका एक नया सेगमेंट जिसका नाम है विज्ञान धारा, और वो रहता है हमारा हर बुधवार, जहां हम बातें करते हैं दोस्तों विज्ञान की, नई नई टेक्नोलॉजी की, नई नई चीज़ों की, और उन सब के बारे में बातें करते हैं जो आज के समय में हम युवाओं को जानना ज़रूरी है। दोस्तों जब भी हम विज्ञान या फिर टेक्नोलॉजी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वही मोटी मोटी किताबें, बोरिंग लेक्चर्स या फिर लंबे लंबे फॉर्मूलेज। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो रुकिए ज़रा, क्योंकि विज्ञान धारा में हम विज्ञान की उन किताबी बातों को थोड़ा सा साइड में करके उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी को हर रोज बदल रही है। दोस्तों हम बात करते हैं उन नए नए आविष्कारों की जो कल तक सिर्फ हम फिल्मों में देखा करते थे, पर आज हमारी हाथ में है, हमारी पॉकेट में है वो सारी चीज़ें। आज हम बात कर रहे हैं आपसे हर रोज AI की, ड्रोन्स की, रोबोट्स की, और उन सारी अनोखी जानकारियों की जिन्हें सुनकर आपको लगे कि जी वाकई में विज्ञान जो है वो उन किताबों से, उन बोरिंग लेक्चर्स से भी हटकर बहुत कुछ है। श्रोतो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से दूर रहना शायद इम्पॉसिबल है। सुबह उठने से लेकर अलार्म से लेकर रात को सोने से पहले स्क्रोल होने वाली जो रील्स है, यहाँ सब में जो है वो साइंस यानी कि जो विज्ञान है वो फैला हुआ है। और आज के हमारे खास सेगमेंट का मकसद भी यही होता है कि हम इस बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, नए नए आविष्कारों को समझें और उनका सही इस्तेमाल करना भी सीखें। क्योंकि दोस्तों यह सेगमेंट यानी कि आज का ये खास सेगमेंट जो है वो सिर्फ जानकारी नहीं देता आपको, बल्कि आपके अंदर उस छोटे से वैज्ञानिक को भी जो है वो जगाता है जो हर एक चीज़ के पीछे क्यों और कैसे ढूंढता है। क्योंकि अक्सर दोस्तों बहुत बार ये होता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ को देख कर हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या, कैसे, ये चीज़ क्यों हो रही है। तो बस इन्हीं सारे सवालों को अपने आप को जो है वो संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बने रहना है हमारे विज्ञान धारा के सेगमेंट में, जहां हम हर बुधवार कुछ नया आपको सिखाते हैं, कुछ आपको नया बताते हैं और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जहां हम ना केवल विज्ञान को जाने बल्कि उन चीज़ों को जानते हैं जिनको जानकर हम उनमें कुछ नयापन ला सके। और कहते भी हैं दोस्तों कि केवल और केवल नए आविष्कार जो है वो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं होते, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं करते, बल्कि अगर आप भी किसी भी एक छोटी चीज़ को किसी नए तरीके से करने की सोच रहे हैं या जो तरीके से वो चल रही है उसको हटकर उसमें कुछ नयापन, कुछ बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए आप भी एक वैज्ञानिक है और आपने भी नया आविष्कार किया है। तो बस आज के ये विज्ञान धारा की ये जो सेगमेंट की जो टाइमिंग है वो शुरू हो चुकी है, और खूब सारी आज के सेगमेंट में आपके साथ बातें करेंगे, लेकिन साथ ही आपके मनोरंजन का ध्यान रखते हुए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: जी श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। और हम आपको बता चुके हैं कि आज का खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान धारा। दोस्तों, हम विज्ञान धारा यानी कि उन चीजों के बारे में आपके साथ बात करते हैं, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको बताया था कि आज के समय में इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहां पर चलने वाला कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इससे बचकर निकल सके। हम रोज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी ये जो आजकल सर्च इंजन्स चल रहे हैं उन्हें यूज करते हैं। हमें लगता है कि बस यही तो इंटरनेट है, पर क्या आपको पता है कि इंटरनेट हम और आप रोज देखते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4-5% हिस्सा है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये सिर्फ और सिर्फ 5% से भी कम हिस्सा है जो डेली रूटीन में जो भी एप्स या फिर जो भी बहुत ज्यादा फेमस या यूज करने वाले जो भी एप्स है हम इनका यूज करते हैं, ये बहुत ही कम इंटरनेट का जो है वो हिस्सा है।

बाकी का 95% इंटरनेट हमारी नज़रों से जो है वो छुपा रहता है। और इसी हुए ये जो छुपा हुआ इंटरनेट है, इसी का एक सबसे बड़ा और सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो होता है द डार्क वेब। यानी कि आपको इजी लैंग्वेज में हम बताएं कि ये जो डार्क वेब है वो क्या होता है?

बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम जो है वो नॉलेज लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस वेब है, और उस पहाड़ का जो हिस्सा पानी के अंदर छिपा रहता है, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हम बिना पासवर्ड या लॉगिन के नहीं देख सकते, जैसे कि आपका पर्सनल ईमेल बॉक्स या फिर बैंक अकाउंट का डेटा, वो है डीप वेब। और जैसे कि एग्जाम्पल पे हमने कहा था कि हम पूरे इंटरनेट को एक समुद्र के रूप में मानते हैं, तो समंदर की सबसे गहरी और अंधेरी तह में, जहां हम रास्ते में नॉर्मली नहीं जा पाते, वहां बसता है डार्क वेब, यानी कि इंटरनेट की अंधेरी दुनिया। और आज दोस्तों हम इस खास सेगमेंट में आपसे बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में, कि इंटरनेट की ये छुपी हुई दुनिया किस तरीके से काम करती है, क्या है ये, और इन सब के बारे में। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेट का जो हिस्सा है, मतलब ये जो हम डार्क वेब की बात कर रहे हैं, उसे हम ये जो सर्च इंजन्स होते हैं गूगल वगैरह, उन सब के जरिए क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि डार्क वेब की जो भी वेबसाइट होती है वो नॉर्मली, जैसे कि हम हमारे ईमेल आईडीज बनाते हैं या फिर किसी भी आईडी या फिर किसी भी साइट के जरिए हम वहां तक पहुंचते हैं, जैसे .com, .in, इन जैसी जो होती है उनके जैसा नहीं लगता। इनके नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, इनके बहुत बड़े अलग अलग कोड्स होते हैं, इनके शब्द होते हैं, नंबर्स होते हैं। इन वेबसाइट को आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए ओपन नहीं कर सकते, जिनके जरिए जैसे हम नॉर्मली कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, उनकी तरह आप इन्हें सर्च नहीं कर सकते। इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और वो ब्राउज़र केवल इसे ही ओपन करने का या फिर इन्हें एक्सप्लोर करने का काम करता है। तो दोस्तों जैसे ही हम देखते हैं कि प्याज में बहुत सारी परतें होती है ना, ठीक वैसे ही ब्राउज़र जो है वो आपकी पहचान को इतनी सारी लेयर्स के पीछे छिपा देता है कि यह कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाता, या फिर यूं कहें कि आपकी इन्फॉर्मेशन इजीली किसी तक भी जो है वो नहीं पहुंच पाती। और कहाँ से इंटरनेट चला है, क्या देख रहे हैं हम, उसका बहुत ज़्यादा अनगिनत जो चीज़ें हैं उसके पार्ट्स होते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है वो होती है ये डार्क वेब की दुनिया, जहाँ से सब अनजान होते हैं, यानी कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें लगता है ये बेसिक चीज़ें हैं, यही इंटरनेट है, नहीं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन्स है, हमारे जो डाटाज है, जो जहाँ तक सिक्योर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वही डार्क वेब की असली दुनिया है। तो बस आपको ये जरूर ख्याल मन में आना चाहिए कि ये आज के समय में हमारे लिए डार्क वेब क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपको ये बताएं कि शुरुआत में इसका मकसद जो है वो ये था कि केवल और केवल यूजर्स की जो आइडेंटिटी है, उनके डाटाज है और उनकी जो भी गोपनीय चीज़ें हैं उनको जो है वो सिक्योर किए जाए। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतने डेवलपमेंट कर लिए कि कॉन्फिडेंशियल सूचना के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज के समय में जो है वो सिक्योर करना, सुरक्षित रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, या फिर प्राइवेसी, ना केवल पर्टिकुलर किसी प्राइवेट व्यक्ति की, बल्कि डिजिटल दौर में डाटा हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा चोरी करना ईजी हो गया है। ऐसे में जो लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, जो कि किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, किसी एक बड़े ऐसे संगठन से जुड़े होते हैं जिनके जरिए किसी देश की, किसी समाज की या किसी अन्य लोगों की सुरक्षा जो है वो जुड़ी हुई होती है, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल आज के समय में किया जाने लगा है। दोस्तों इस पर नज़र रखना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि बेसिक वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक हर एक आम नागरिक की जो है वो पहुंच बनी होती है, वहां तक वो पहुंच जाता है। और लेकिन इन सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं डार्क वेब, वहां तक पहुंच पाना हर एक इंसान या एक आम नागरिक की पहुंच जो है वो इजी नहीं हो पाती। या एक बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहां प्रतिबंधित दवाइयां, हथियार या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो इजीली अवेलेबल होती है, जो हमारे सिक्योरिटी, हमारे देश की चीज़ों से जुड़ी होती है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने पहले भी कहा, क्राइम रेट, जैसे कि पहले क्राइम्स होते थे, आज के समय में क्राइम रेट जो है वो साइबर के जरिए होने लगा है। तो बस किसी बड़ी कंपनी का डेटा हैक ना हो, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल ना चले जाए, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, इन सारी चीज़ों को हैक होने से बचाने के लिए डार्क वेब जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है हमें अवेलेबल करवाता है। तो दोस्तों बस हम जो है वो दुनिया में आने के लिए या फिर दुनिया को और बखूबी जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम

जो हमारे आसपास या हमारे सामने जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकर साथ ही साथ उन ऐसी चीज़ों को भी जाने जो हमें दिखाई नहीं देती है। वैसे ही ये डार्क वेब की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है। और आज के समय में यूथ के बारे में हमारा स्पेशल सेगमेंट रहता है जहाँ हम यूथ के बारे में बातें करते हैं, तो यूथ जो है वो इस विज्ञान धारा सेगमेंट में इस टॉपिक पे क्या अपने आप को जो है वो सीख दे सकता है, अपने आप को क्या जो है वो सिखा सकता है कि मैं इस टॉपिक से या फिर आज के समय में डार्क वेब के जरिए क्या सीख सकता हूँ, तो वो एक सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है। उस चैलेंज के बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे इस विज्ञान धारा सेगमेंट में, लेकिन खास सेगमेंट में फिर आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जी स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर कार्यक्रम चल रहा है युवानी, खास सेगमेंट विज्ञान धारा में, जहां हम बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले डार्क वेब के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं कि हम युवाओं के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन कह सकते हैं इस टॉपिक को आज के खास सेगमेंट में लेने के लिए। हमारा मकसद भी यही है कि हम हमारे यंग जो भी लिसनर्स है, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, या फिर जो भी जो यंग लोग हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताएं। दोस्तों आज के समय में युवाओं के बीच कूल बनने का चक्कर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है। डार्क वेब को टटोलने की कोशिश करना हम सबका जो है वो आज के समय में एक ज़रूरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उन्हें ये लगता है कि एक एडवेंचर है, एक गेम है। लेकिन आपको बता दें कि बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना सोचे समझे दिखाई गई जो भी उत्सुकता होती है वो बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आप सिर्फ देखने के लिए डार्क वेब पर जाते हैं तो ये बहुत सारे खतरे आपके लिए लेकर आती है, जैसे कि धोखाधड़ी या फिर स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं। डार्क वेब पर 90% से ज़्यादा वेबसाइट फर्जी और स्कैम है। वहाँ किसी भी गलत लिंक पर क्लिक करते ही आपका पूरा सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं। इसलिए किसी भी एक क्लिक को करने से पहले ज़रा सोचे समझे और फिर कदम बढ़ाएं। साथ ही साथ वायरस का हमला, वहाँ ऐसे बहुत सारे खतरनाक वायरस होते हैं जो आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल का कैमरा या माइक्रोफोन बिना आपकी परमिशन के ऑन कर सकते हैं। आपकी पर्सनल तस्वीरें या फिर आपकी जो भी वीडियोस है वो उनके हाथ लग सकते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है। तो आपको किसी भी चीज़ को पहले क्लिक करने से पहले सोचना है। साथ ही साथ लीगल ट्रबल भी आपको आ सकता है। जैसे कि आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत बार ये होता है कि हम बिना किसी गलती के कभी कभी हम फाइन जो है वो हमारे पास लग जाता है। वेब पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, वहाँ पर किसी भी जो भी इलीगल लिंक होता है उस पर क्लिक करना या गलती से भी कुछ अनऑथोराइज्ड या फिर अनलीगल जो चीज़ें हैं उसको डाउनलोड करने से आपको सीधे साइबर पुलिस जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकती है। आप को जो है वो कांटेक्ट करने के बाद में आपसे पूछताछ कर सकती है। तो बस दोस्तों, साइबर क्राइम के कानून आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, ये हम सब जानते हैं। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, बशर्ते हम जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। इंटरनेट पर ज्ञान का एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए, बहुत सारे ऐसे AI टूल्स भी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने करियर को चमकाने के लिए। दोस्तों डार्क वेब के चक्कर में पड़कर अपनी डिजिटल सुरक्षा और अपने भविष्य को खतरे में मत डालिए। स्मार्ट बनिए, डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी रखिए, पर हमेशा सुरक्षित रहिए। उम्मीद भी यही करते हैं कि आज के इस खास सेगमेंट विज्ञान धारा में आज का ये टॉपिक जो है वो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया का सच जो है वो आपको समझना

जरूरी है। जब तक आप उन चीजों को नहीं समझते हैं तो शायद गलतियां होना लाजमी है। तो बस आज के खास सेगमेंट से डार्क वेब के बारे में उम्मीद है आपने बहुत कुछ नया जाना होगा, बहुत कुछ नया समझा होगा।

खास सेगमेंट आपको पता ही है, बुधवार का विज्ञान धारा सेगमेंट में, जहाँ पर हम खूब सारी बातें आपके साथ करते हैं विज्ञान से जुड़ी ही। अब हम बात करने वाले हैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर एक सेकंड आपका पीछा करता है, चाहे आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, या फिर आप कॉलेज में, कैफे में, कहाँ कहीं पर भी आप हो, कोई है जो चुपचाप बिना कोई आवाज किए आपके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। सुनकर शायद थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, या हो सकता है डर भी लग रहा हो, क्या कोई सच में कोई भूत प्रेत है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? तो नहीं नहीं बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया की भाषा में, इसे कहते हैं साइबर ट्रैकिंग। यानी कि साइबर ट्रैकिंग क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये हमारे साथ बना होता है, क्या होता है ये, कंपनियां और हैकर्स हमारे पीछे कैसे पड़ जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल पीछा करने वाले साए से आज के युवा खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो बस तैयार रहिए आज के इस खास सफर में जो कि जारी है युवानी का, हम बात कर रहे हैं आपसे साइबर ट्रैकिंग के बारे में। अब सबसे पहले आपको ये बताएं इजी लैंग्वेज में कि साइबर ट्रैकिंग है क्या। बहुत बार हमारे दिमाग में जब हम नया वर्ड सुनते हैं या बहुत भारी भरकम कोई वर्ड सुनते हैं तो हमें अजीब सा लगता है और हम उस वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाएं। जैसे पुराने जमाने में जासूस किसी के पीछे लग जाते थे ना, कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खरीद रहा है, ठीक वैसे ही आज के डिजिटल दौर में जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, कोडिंग और टूल्स के जरिए आपकी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसी को कहते हैं साइबर ट्रैकिंग। दोस्तों आपको बस ये मानना है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको ऐसे लगे कि मेरी पर्सनल चीज़, या फिर मैंने ऐसा कुछ गलत सर्च किया है, मैंने कुछ ऐसा गलत क्लिक किया है जो मेरे लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है। दोस्तों जब भी आप कुछ करते हैं तो वो करने से या फिर कुछ क्लिक करने से, कुछ सफ़र करने से, वो सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए, वो जो भी डार्क वेबसाइट्स होती है, जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है। जैसे इंटरनेट को पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ये कोई नॉर्मली जादू नहीं है दोस्तों, ये एक टेलीपैथी है, जहाँ जैसे जैसे कभी आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जिस तरीके की चीज़ें अपन स्क्रॉल करते हैं, जो चीज़ें कभी कभी हमारे माइंड में चल रही होती है, कुछ समय बाद या अगले दिन कुछ घंटों बाद हमें वो हमारी स्क्रीन पर दिख जाती है, इसी को दोस्तों ट्रैकिंग कहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी को ट्रैक करके आपका पूरा डिजिटल प्रोफाइल जो है वो बना लिया जाता है। अब सवाल दोस्तों अपने मन में ये आता है कि ये ट्रैकिंग होती कैसे है, तो बस इन कंपनियों को पता कैसे चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन्हें कैसे पता चलता है, तो इनके जासूस कौन है, या फिर क्या एक्टिविटी होती है? तो चलो आपको बताते हैं कि इनके बहुत सारे जासूस होते हैं, जैसे कि आप उन्हें नाम दे सकते हैं, जैसे कि कुकीज़, ये खाने वाले कुकीज़ यानी कि खाने वाले बिस्किट नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी डेटा फाइल्स होती हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट आपके फ़ोन या लैपटॉप में एक छोटी सी फाइल जो है वो सेव कर देती है, और ये फाइल याद रखती है कि आपने उस वेबसाइट पर क्या क्या देखा था, किस चीज़ पर क्लिक किया था और आपकी पसंद क्या है। अगर हम दूसरे जासूस की या फिर ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो है आईपी एड्रेस। ये आपकी इंटरनेट का घर का पता है, आप दुनिया के किस कोने में बैठकर किस मोबाइल नेटवर्क के जरिए कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, ये आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे ही अगर और बात करें तो वो है ट्रैकिंग पिक्सल्स। ये इतने तेज होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि आपको स्क्रीन पर दिखते भी नहीं है, ये सिर्फ बहुत ही बारीक सी इमेज कोड होते हैं जो वेबसाइट पर या फिर आपके ईमेल्स में छिपे होते हैं। जैसे ही आप वो ईमेल खोलते हैं भेजने वाले को उसका पता चल जाता है, और आपने ईमेल किस समय खोला, कितनी देर पढ़ा, और उस ईमेल को पढ़कर आपने क्या एक्शन लिया, कहाँ कहाँ क्लिक किया, वो सारी चीज़ें जो है वो उसे पता चल जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइबर ट्रैकिंग के बारे में, हमने जाना कि साइबर ट्रैकिंग क्या है, अब बात करते हैं कि युवाओं को जो है वो आज के समय में इस चीज़ से क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या बड़ा सबक जो है वो आज के इस सेगमेंट के ज़रिए ले सकते हैं। तो

जी दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे साइबर ट्रैकिंग के बारे में। हमें कभी कभी लगता है कि ठीक है ना, सिर्फ एड्स की, विज्ञापन्स की ही तो बात है। चलो ठीक है, अगर हमारी पसंद की चीज़ें दिख रही है हमें, हम जो चीज़ सर्च कर रहे हैं वो इंटरनेट अगर हमें फिर से प्रोवाइड करवा रहा है, उस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? हमारा काम तो आसान ही हो रहा है। लेकिन ज़रा रुकिए, यहीं पर आज के यूथ्स के लिए सबसे बड़ा सबक जो है वो छिपा है। साइबर ट्रैकिंग सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग तक ही जो है वो सीमित नहीं है। साइबर ट्रैकिंग, इसका एक बहुत बड़ा और एक खतरनाक पहलू ये भी है कि हमारे यूथ को जानना ज़रूरी है, और वे है कि आपकी प्राइवेसी का जो है वो अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा है।

आज के समय में डेटा को नया सोना या नया तेल कहा जाता है। आपकी हर एक क्लिक पर, हर एक लाइक पर, यहाँ तक कि आपकी किसी भी रील या पोस्ट पर कितने सेकंड्स रुके, ये सब ट्रैक करके बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है वो बेचा जाता है। आपका पर्सनल बिहेवियर, आपकी सोच, आपका पॉलिटिकल झुकाव, सब कुछ उनके पास एक रिपोर्ट की तरह सेव होता है। तो सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी की एक एक बात किसी अनजान व्यक्ति को पता हो? शायद बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ और ये जानना भी हमें ज़रूरी है कि मेंटल मैनिपुलेशन जो है वो आज के समय में किया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हम दिन रात चलाते हैं ना, ये साइबर ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है और ये आपको वही वही चीज़ें दिखाते हैं। नतीजा, आप रील स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे 4 घंटे का समय बर्बाद कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और यह ट्रैकिंग आपको सोशल मीडिया का एडिक्टेड जो है वो बना रही है। ये भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। साथ ही साथ दोस्तों, बात करते हैं इसके सबसे बड़े खतरे की। अगर यह ट्रैकिंग डेटा किसी गलत हैकर या फिर स्कैमर के हाथ लग जाए तो क्या होगा? हम युवा दोस्त हर जगह अपनी लाइव लोकेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं, जल्दी जल्दी बहुत बार ये डालते रहते हैं कि चिलिंग इन दिस कैफे या फिर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, मतलब बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं ट्रैकिंग डेटा इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको डेली रूटीन का पता चलता रहता है। वो जान जाते हैं कि आप किस वक्त कहाँ पे हैं। इससे डिजिटल स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और फाइनेंशियली फ्रॉड जैसी चीज़ों का खतरा 1000 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये चीज़ें इतनी खतरनाक है और आज के समय में इनके बिना शायद लाइफ को जो है वो जीना मुश्किल भी है, पॉसिबल भी नहीं है, तो इन सब से खुद को बचाएं कैसे? तो बस ये सवाल आता है कि अब आज के समय में जैसे ही हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो हमें जो है वो हैक्टिक नहीं होना, हमें पैनिक नहीं करना है। जैसे कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा, वैसे ही हम भी आज के सेगमेंट में आपको बताते हैं इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन। तो बस अपने आप को थोड़ा सा गौर कर आपको इन चीज़ों को सुनना है कि किस तरीके से इन बातों को अपना कर आप साइबर ट्रैकिंग को जो है वो मात दे सकते हैं। आप इन्हें हमारी गाइडेंस कह सकते हैं, आप इन्हें टिप्स कह सकते हैं। तो अगर टिप नंबर 1 की बात करें तो वो है कुकीज़ को ब्लॉक करना सीखे। जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो नीचे एक पॉपअप आता है, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। हम बिना सोचे समझे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं। आज के बाद जो है वो आप ऐसा ना करें। वहाँ रिजेक्ट ऑल या फिर मैनेज सेटिंग में जाकर थर्ड पार्टी कुकीज़ को कस्टमाइज कीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो है। टिप नंबर अगर 2 की बात करें तो वो है प्राइवेसी वाले ब्राउजर्स और सर्च इंजन चुनें। आज के समय में बहुत सारे ऐसे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए आप सर्च चीज़ों को सर्च करके उन इंजन्स का यूज़ करते हैं जो आपके ट्रैकिंग को ब्लॉक करते हैं और आप उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो ऐसे आपको प्राइवेसी वाले सर्च इंजन्स जो है वो यूज़ करने हैं। टिप नंबर 3 की बात करें तो ऐप परमिशंस हमेशा चेक करें। अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और देखें कि किस किस ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दे के रखी है। भला एक कैलकुलेटर ऐप या फिर फोटो एडिटिंग ऐप को आपकी लोकेशंस या फिर कॉन्टेक्ट्स की क्या ज़रूरत है? जो परमिशन फालतू लगे उसे तुरंत डोंट अलाउ या फिर बंद करें। टिप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है VPN का यूज़ करें। जब भी आप किसी कैफ़े या फिर रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई इस्तेमाल करें तो एक अच्छा VPN ऑन करें, यानी कि आपके IP एड्रेस को जो है वो छिपा देता है जिससे कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाते। तो हमेशा आपको VPN का जो है वो बटन हमेशा यूज़ करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन बातों को जो है वो ध्यान रखेंगे, इन बातों को अपनाएंगे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बेहद खूबसूरत है, बहुत काम की भी है, लेकिन यहाँ आंखें बंद करके चलना बेवकूफ़ी होगी। जैसे सड़क पर चलते हैं हम बाएं दाएं देखते नहीं हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में चलते हुए भी हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान जो है वो खुद रखना है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है लेकिन स्मार्टफोन को खुद से ज़्यादा स्मार्ट मत बनने दीजिए। अपनी प्राइवेसी की चाबी अपने हाथ में रखिए।

जी दोस्तों, ये था हमारा आज का विज्ञान धारा का खास सेगमेंट। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ नया जाना होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और फिलहाल जो है वो समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हर रोज़ शाम 5 बजे आपके साथ जुड़ने आते हैं कुछ नया और कुछ बेहतरीन लाने की उम्मीद के साथ। फिलहाल जाने की आज्ञा दें और तब तक के लिए यानी कि अगली मुलाकात तक सुरक्षित रहिए, जागरूक बने रहिए और नया सीखते रहिए और सुनते रहिए ओनली ऑन 100.7 FM। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दें आपके आरजे दोस्त भावना को। आप सभी को मेरा नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 5:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीतों का समय रहेगा शाम 6:10। 6:20 पर आप सुनेंगे

6:30 पर सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:42 पर। 6:48 पर श्रोता सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार प्रसारण हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।

7 बजे सुनिए कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम में होंगी चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या, News@9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। ये समाचार प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: रात्रि 9:15 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम चर्चा का विषय है, श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:00। 10:30 पर सुनिए सुगम संगीत। सभा के आखिर में 11:00 होंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11:05 पर। ये समाचार प्रसारण हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले करेंगे। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:00 वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है।

0: उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत
3: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक केपेबिलिटीज थ्रू मिशन

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

श्रोता अभी सुन रहे थे स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म का गीत, आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह, तन्वी साह और साथियों की, गीतकार थे गुलजार, संगीतकार A.R. रहमान। इस देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: मन्त्री अस्ति। राष्ट्रपते द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायि विश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः, कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानेत्यादयः केन्द्रीय मन्त्रिणः स्वतंत्र भारतस्य दीर्घतम निरन्तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायि विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन, संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, विधि न्याय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं, वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं, समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिंश्च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा पीएलआई इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं द्वाविंशति नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्रमन्त्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीय चक्रस्यान्तर्गतं आहत्य 96 समवाय विशेषाः चिताः सन्ति, येषु 20+28,12,000 कोटि रूप्यकाणां प्रतिबद्ध निवेशः, 58,000 कोटि रूप्यकाणां प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49,400 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पाञ्च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मंत्रिमंडलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,2,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मंत्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्य अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG सम्पर्कान् PNG सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पक्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लंघनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गोलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के 4 लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक अवसर को देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को राष्ट्रीय यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग बताया है। इस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी विकास योजनाओं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बनाने के दृष्टिकोण की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बैठक में शिरकत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में आज एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि को 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास का प्रतीक बताया।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने

0: कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें पत्र लिखकर 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी की नीतियों से सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आधुनिक स्वरूप मिला है। इस उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में देवस्थान विभाग की ओर से विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई।
2: ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सुदा शास्त्री यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयुः प्रमोखी।
1: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
1: इस उपलक्ष में विभिन्न स्थानों पर नारी चौपाल, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी रखे गए। प्रदेश भर से विभिन्न नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। प्रगतिशील किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लमोरिया ने भी राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को अनुकरणीय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री वैष्णव आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। वे एमएनआईटी भी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन आज जयपुर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं जो राज्य के 94% क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। प्रसार भारती के चेयरमैन पद्मश्री प्रसून जोशी भी जयपुर पहुंच गए हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 168 मेगावाट क्षमता का ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक होगा, जहां उत्पादों और एआई क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के फोर लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,359 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बीओटी मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पर विकसित किया जाएगा। इससे नागौर और बीकानेर के बीच संपर्क बेहतर होगा, साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से उत्पादन इसी महीने शुरू होने के आसार हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित हो सकेंगे। मुख्य सचिव आज दिल्ली से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल रिफाइनरी के एलपीजी और अन्य उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक यहां से 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल सालाना रिफाइन किया जा सकेगा। उन्होंने रिफाइनरी उत्पादनों की बिक्री संभावनाओं को तलाशने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। जयपुर खो नागोरियान पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में थानाधिकारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस भीषण अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए इन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं पुलिस टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाते हुए अब तक 5 अवैध पटाखा फैक्ट्री गोदामों को सील किया है। हादसे के बाद इस क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, मशीनें और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच एफएसएल टीम मौके से नमूने इकट्ठे कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिल रहा है। अधिकतर हिस्सों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं दिल्ली और हरियाणा से सटे राज्य के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चली। अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई। इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर में दिन के पारे में उछाल आने से लू का सबसे अधिक असर रहा। इन स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कल से 14 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। विभाग ने इन संभागों के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के फोर लेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी। और पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने उत्पादन शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ोला ने तैयार किया है। जल संरक्षण से विकास तक प्रशासनिक सक्रियता और जनभागीदारी का एक अनूठा संगम बीते माह जिले में देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा, तो दूसरी ओर जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े अभियानों में आमजन की भागीदारी भी बढ़ती नजर आई। इस दौरान मौसम ने भी कई रंग दिखाए। मई के अधिकांश दिनों में तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, लेकिन जून की शुरुआत में आंधी, बादल और हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कुल मिलाकर बीता महीना सलूम्बर में विकास कार्यों, धार्मिक आयोजनों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सक्रियता के नाम रहा। भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालय तक पेयजल की समस्या कई जगह सामने आई। ऐसे समय में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना रही। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने विभिन्न पेयजल योजनाओं, जलाशयों और हैंडपंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। इस बीच जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सबसे बड़ा और चर्चित अभियान बनकर उभरा। 25 मई से 5 जून तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में जल चौपाल, श्रमदान, पौधरोपण, साइकिल रैली, जल स्रोतों की साफ सफाई और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरणी नदी, जैसमंद झील, कमल तलाई और विभिन्न गांवों की बावड़ियों और तालाबों पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास था कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम रहने के बजाय जन आंदोलन का रूप ले। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, महिलाएं और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में इन गतिविधियों में शामिल हुए। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां पूरे महीने चलती रहीं। जिले में संचालित 10 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए। पंचायती राज विभाग को 6 लाख, शिक्षा विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई और जिले भर में पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम जैसे अभियान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने और बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहले हुई। टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी वैक्सीनेशन, डेंगू जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आयुर्वेद विभाग ने योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वहीं जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन शटर डाउन की भी तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान के तहत बिना पंजीकरण और बिना डिग्री संचालित क्लिनिकों, झोला छाप डॉक्टरों और अवैध जाँच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। जैसमन की पाल और सेरिंग तालाब पर नियमित योग किए जा रहे हैं। जिला कारागृह में बंदियों के लिए योग कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासन और आयुर्वेद विभाग का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना रहा। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसमंद की पाल स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी लोगों ने देखा। इसके अलावा विभिन्न गांवों में धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, कथा, भजन संध्या और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी रही। ईद उल अजहा पर भी लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। सलूम्बर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। श्री नरेंद्र मोदी भारत रा सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बनिया। ई उपलब्धि माथे मंत्रिमंडल मारा मान माय प्रस्ताव पास कीनो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव काल जयपुर पधारेला। न्यारा न्यारा कार्यक्रम माय शिरकत करण रो कार्यक्रम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ना

0: बनावण री मंजूरी दीनी और पचपदरारी तेल रिफाइनरियों इनी महीना उत्पादन शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। श्री नरेंद्र मोदी देश में सबू लंबा बगत ताई प्रधानमंत्री रहवण वाला नेता बन क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी ने ई सारू बधाई दीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए राष्ट्रपति इन देश री जनता रा वारी अगुवाई माई अटूट भरोसा रो सबूत बतायो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वारा बधाई संदेश माई प्रधानमंत्री मोदी रा ई कार्यकाल ने देश माई बदलाव लावन वालो जमानो बतायो। ई मौके आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए री नई दिल्ली माई खास मीटिंग राखी छी। मीटिंग में एनडीए गठबंधन रा सदस्य दलां और भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता मौजूद रहा। इस दौरान देश रा विकास रा न्यारा न्यारा कार्यक्रम और बुनियादी योजनावां सागे साल 2047 ताई देश ने विकसित बनावण रा नजरिया रो जायजो लियो छियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई मीटिंग में शामिल थिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ई प्रधानमंत्री मोदी रा मान माय आज एक प्रस्ताव पास कर माना ई उपलब्धि सारू बधाई दीनी। मंत्रिमंडल री मीटिंग पाछे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माय खबर नवीसा ने इन री जानकारी दीनी। वे प्रधानमंत्री री ई उपलब्धि ने देश री 140 करोड़ जनता रा भरोसा री निशानी बतायो।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ई प्रधानमंत्री मोदी रा लाडला 12 साल रा बेहतरीन कामकाज सारू वाना कागज लेखर राज्य री 8 करोड़ जनता री ओर शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री खतमाय मांड्यो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माय प्रदेश ही विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण ओड़ी बढ़ रियो है। ई मौके आज देवस्थान विभाग री ओर आखा राज्य माय खास पूजा अर्चना कर खुशहाली री कामना करी छी।
2: ओम तत्वाजानि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्री यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्युर्षगं समान आयु प्रमोखी।
0: देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माय कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली एनडीए सरकार हर हलका और हर तबका रा भला सारू काम कीनो है।
3: बीते 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश के गांवों, गरीबों, किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
0: ई मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ही राखी छिया। देश परदेश न्यारा न्यारा नेतावा और संगठन नारी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आ उपलब्धि हासिल करन पर बधाइयां और शुभकामनावां मिल रही है। प्रगतिशील किसान यूनियन रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रंगलाल सिंह लामोरिया ही देश सेवा सारू समर्पित प्रधानमंत्री मोदी रा व्यक्तित्व ने अनुकरणीय बतायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नई दिल्ली माय नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग री सदारत करन रो कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन माय भेवन वाली मीटिंग रो खास मुद्दो 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास राखी जियो है। मीटिंग माय उद्यमिता और कौशल विकास ने बधावो देवन और देश माय काम धंधा रा स्थायी मौका मुहैया करावन रे बारा माय विचार करियो चावेला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल जयपुर पधारण रो कार्यक्रम है। वे आकाशवाणी परिसर जैसलमेर रा रामगढ़ माय 20 किलोवाट बूतारा एफएम ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन करेला। इस आगे प्रदेश माय एफएम ट्रांसमीटर री तादाद 39 हो जावेला। फिलहाल राज्य माय आकाशवाणी रा 38 केंद्र है जो प्रदेश रा 94% हलका ताई पहुंचे है। श्री वैष्णव रो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरों करण रो ये कार्यक्रम है। इन पाछे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए कृषि अनुसंधान केंद्र माए राख्या जावन वाला विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भेला। इरे जरिए देश माए लारला 12 साल माए भया ऐतिहासिक विकास सुशासन अर जनता रा भला रा कामारी जानकारी समाज रा हर तबका ताई पुकाई चावेला। केंद्रीय मंत्री प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए राखे चावन वाली प्रेस वार्ता नई संबोधित करेला। प्रसार भारती रा अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जयपुर पथार क्या है। रामगढ़ ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार चैनी आज जयपुर पधार्या। अमरीकी कंपनी मेटा गुजरात रा जामनगर माए मारो पहलो एआई सक्षम डेटा सेंटर खोलन रो ऐलान कीनो है। ओ दुनिया रा सब बत्ती हलचल वाला डिजिटल बाजारा माए शामिल फैला जठे सामान और एआई जुड़िया बूता ने मजबूत बनावन सारू विश्व स्तर रो बुनियादी ढांचो मुहैया करायो चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो है कि देश में CNG री कोई कमी नहीं है। वे कहो कि घर ताई पाइपलाइन जरिए ही रसोई गैस रिपूर्ति करी जा रही है। श्री पुरी कहो कि LPG कनेक्शन ने PNG कनेक्शन माए बदलन री कोशिश करी जा रही है। केंद्रीय मंत्री कहो कि कुछ लोग गलत जानकारियां देर दुनिया रा मौजूदा हालात रो फायदो उठावन री कोशिश कर रहा है।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 62 ने 4 लेन रो बनावन रा काम ने मंजूरी दे दी नी है। इन्हें करीब 1,359 करोड़ रुपये बत्ता खर्चों बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल माथे विकसित करियो चावेला। इन्हों नागौर और बीकानेर बीच जुड़ाव बेहतर वेला। बालोतरा जिला रा पचपदरारी राजस्थान रिफाइनरियों उत्पादन इन्हीं महीना शुरू होवन रा आसार है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि इन्हो प्रदेश में निवेश नौकरी धंधा और आमदनी रा नुआ मौका बनेला। मुख्य सचिव आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम रा एहलकारा सागे वर्चुअल तरीका राखी जी मीटिंग माई पोल रहा है। वे कहो कि HPCL रिफाइनरी रा LPG और दूजा उत्पादन ने बत्ता बत्ता काम ले तय करियो चावेला। मुख्य सचिव बतायो कि 8 सालाना 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल री सफाई करी जा सकेला। जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए काल लाई लागण भी मौताना मामला माए एक ASI समेत 9 पुलिस वाला ने मुअत्तल कर दिया चिया है। पुलिस इन हलका माए जांच रो अभियान चलार गैर कानूनी तौर चल रही 5 पटाखा फैक्ट्रियां और गोदामा ने सील कर दीना। हादसा पाछे इन हलकाओं मोटी तादाद माए बारूद मशीना और दूजी विस्फोटक सामग्री बरामद करी ची। FSL री टीम मौकाओं नमूना भेड़ा कर मामला री जांच कर रही है। रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्यालय और अजमेर मंडल ने बेहतरीन काम सारू उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देर नवाजियो है। अजमेर मंडल रा रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा बतायो कि मंडल ने डिजिटल पहल HRMS आदर्श एडॉप्शन डिप्लॉयमेंट और री इन्वेंटिंग ऑफ सर्विसेज रा तहत रेल सेवा ने आधुनिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बनावन सारू नवाजी चियो है। हनुमानगढ़ में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री परेशानियां आगे करण सारू 12 जून ने पूर्व सैनिक समस्या समाधान शिविर लगायो चावेला। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बतायो कि शिविर में पहली वाला फौजियां और वीरांगनावां री पेंशन स्वास्थ्य सेवा और दूजी सरकारी योजनावां जुड़ी समस्यावां मौके निपटावन री कोशिश करी जावेला।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनले सगले हितुले किसान बहन भैया ने भाई देवे का निशू
4: और भाई अरविंद का नियो मोकड़ा मोकड़ा राम
3: राम राम राम राम अरविंद भाई राम राम
4: राम राम किसान भाया राम राम।
3: अरविंद भाई बार गर्मी को जो टेम है ना वो तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बारे निकलते ही बेरो पड़ेगा भाई। गर्मी है बात झुलसान वाली गर्मी है भाई। चामड़ी है ना, यहाँ चामड़ी के ऊपर यहाँ लाग गया ना ताती लू। और आज तो दिन का महीने दोपहर में बहुत जोर की लू चलन लाग रही है। काल भी गर्मी है वाह मोगली, कई थोड़े आंधी भी चली। दिन के की है के थोड़ा सो आंधी को असर है और आंधी टावरी ही तो भी की है के मान लो खेतों के मायने काम धाम कर रहा किसान बहन भाई तो मांगे थोड़ी बहुत समस्या भी हुई। और बाहर को जो को बगत है ना वो की है के मौसम है ना वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है। तो आप देखा के 10 कोस के ऊपर तो आंधी चलन लाग रही है, 10 कोस के ऊपर मान लो कटे छाटा छिड़को होने लाग रही है और कठे मान लो जोर की झुलसान वाली चिलचिलाती जगी गर्मी है वह पड़न लाग रही है। तो भाई प्रकृति को जो रंग ढंग है ने वो थोड़ी थोड़ी दूर में देखो अरविंद भाई बदल तो निगाह आने लाग रही है। तो कठे न कठे मान लो जो आपनों भाई कहने को मतलब वो है कि जब गर्मी को टेम हो ना तो एक सार गर्मी पड़िया करती है और अब मान लो थोड़ी देर के बाद में मान लो आंधी आ जा किन्ने ओला पड़न लाग रहे हैं, किन्ने छांटो छिड़को शुरू हो रही है, किन्ने धूल भरी आंधी चाल रही है, किन्ने काली पीली आंधी आ रही है। तो कठे न कठे मान लो भाई उन आले को जो बगत है ना भी कमाई ने मौसम में देखो आंधी तावड़ो तो सदा ही रहते है पर जो थोड़ी थोड़ी देर में जो तापांतर होवे ने वो कठे न कठे मान लो नुकसानदेह भी होवे। और आपा जो आपनो जिकी प्रकृति है आपनो जो पर्यावरण है बी के मायने गढ़न गढ़ा जो असंतुलन हुए ने वो भी एक कारण है वो अपने निगावे है
4: भाई। अबार को जो मौसम जो है ना वो के एक बदलतो मौसम हो है। लेकिन भी बदलते मौसम के मायने भी आ चीज अपन देखने मिले के दिन के मायने सगड़ो तावड़ो आथन गया है जो चोखो मे बरस जा कठे कठे है जो बीच बीच में ओला भी पंती आ जा और रात ने सागेड़ी ठंडे तो वो 24 घंटा के महीने दिन के महीने देखो के तावड़ो इशो के डील के चिरमराट लाग जा और छांटो छिड़को होने के बाद में ओला काकड़ा पड़ने के बाद के महीने बाज की सर्द आवाज की एकदम सर्दी के महीने की ठिठुरन वाली हवा चलिया करे ने बी तरीके को जो मौसम होनो
3: बिल्कुल
4: तो वो जो रात दिन को जो अचानक मौसम में बदलाव हुए ने वो के अपनी प्रकृति के सगे आप की छेड़छाड़ कोई भी तरीका हो बा चाहे रासायनिक तत्व छिड़की करो चाहे आप अंधाधुंध है जो पेड़ पौधा काट की करो चाहे और कोई तरीका हो है जो आप प्रकृति के सगे जी छेड़खानी कर रहा ने बिनी तरह पे प्रकृति को स्पष्ट इशारो है के थे समझ जाओ इन तरीके की जिकी थे हरकत जिकी कर रहे हो ने एक मिनक जमारे के लिए चौकी को नहीं और मिनक जमारे के सागे सागे देखो के अपना बडेरा ही जिका पुराने टाइम कहता है के तावड़े के मौके के मायने अगर जे खेत सागेड़ा तपेगा नहीं तो खेतों का महीनो होगो की बिल्कुल, आ बात बिल्कुल। है जो को देखो के अपना जका परंपरागत खेती जका अबार जका किसान बहन भाई आप कर रहा वे सारा ही समझे कि खेत जीते सागेड़ो तपगो नहीं तो खेत नहीं पजगो कठो।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो बात चीज है जी की आपनी खेती पर भी लागू होए, मिनक जमारे पर भी लागू होए और आपने पशुधन पर अपन ठहरे किसान है और किसान देखो के खेत पशुधन और खुद को जुको भाई घर को परिवार को बूढ़ा ठहरा को टाबरा को सारा को जुको सामंजस्य जुको सही तरीकों बना की रखे और सही तरीके गाडुली गुड़ती हो जदि देखो के किसान है जो कुछ पल है जो सुकून का लेस के।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई अरविंद भाई बात नहीं आ है के अभी अपा मान लो पर्यावरण की बात कर रहा, पर्यावरण असंतुलन की बात कर रहा, तो असंतुलन है ना वो चाहे पर्यावरण को असंतुलन हो चाहे घर परिवार को असंतुलन हो चाहे समाज को और को क्या मई असंतुलन हो, असंतुलन है ना वो फोड़ा ही गल है और चाहे वो खेती बाड़ी के मई ने असंतुलन हो तो भाई कहने को मतलब है कि सो क्या मैं संतुलन की जरूरत है पर कि है कि मिनक है ने मिनक जिया मान लो आप प्रकृति आदमी ने जीने के लिए सगली चीज आसानी उपलब्ध कराई के भाई आदमी ने के चाहे बे सारी चीज प्रकृति आपने प्रदान करी पण आपा के प्रकृति को आपवा इतो अति दोहन करी।

0: आपा पानी के लाग गया तो पानी ने खिंडाना के लाग गया, आपा जी पहाड़ के लाग गया तो पहाड़ खोदने के लाग गया, आपा मट्टी खोदने के लाग गया तो आपा मट्टी खोद खोद की बो कर दियो, और आपा मान लियो प्रकृति की प्रदत्त और कोई चीजा ही तो बांको दोहन करने लाग गया तो बेशुमार मान लियो करने लाग गया।
1: तो आपा के चारो मेरे सुनने मिले के एक आतू ताली कर बजे। देखो प्रकृति है जो हर चीज अपन गिफ्ट में दे, उपहार के तौर पर दिए, और बिकी कोई रकम है जो आपने को ले भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपने है जो ऑक्सीजन दे, आपन ठंडी छाया दे, मैं बरसाने के माइन पेड़ पौधा साये के, आपनी खेती बाड़ी के माइन भी है जो साये के, आपने पशु धन के लिए भी साये के, तो कठिन कठे आपन भी है जो छाती पर हाथ लेना चाहे के भाई आ प्रकृति आपने अगर जी आप इनके सगा हाथ मिला की नहीं चलांगा तो आ कितनी साल देती देती रहेगी। और चाहे भाई आ चीज है जी की आपने समाज में भी लागू हो है के आप कोई के सगे आपने पड़ोसी के सगे रखा तो पड़ोसी भी कठिन कठे भी के भाई आपने सगे भी वो बना की रखे। अगर जे आप पड़ोसी के सगे बना की रखांगा और वो है जो को भी आप की बतलावा और वो एक नहीं लठ ले की तैयार खड़े रहे तो भी तरीके की सिचुएशन है जो को आप प्रकृति के सगे नहीं करा। प्रकृति अपन हर चीज है जो को उपहार के तौर के ऊपर गिफ्ट के तौर के ऊपर देती जा रही है तो आप भी है जो को कठिन कटे प्रकृति के सगे तालमेल रख की चाला आ नहीं के वो चाहे जो को खेत हो है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे और कोई चीज हो है, भी के सगा आप तालमेल बना की रखा और कठिन कठे आप अपना जो कर्तव्य है जगह इन्हें बहु दूर नहीं बाजा बचाव नहीं करा के भाई ओ मैं क्यों वो फलानो कर ले सी नहीं ओ काम मन खुद ने करना है। अगर जे पहले आपने करा तो देखो के आपने देखू देखे आपने आसे पासे आपने घर का आपने परिवार का आपने मोहल्ले का लोग ही जिका भी जागरूक होवे और भी आपको उत्तरदायित्व है जिको समझे। अब आप बात करा के आपसी सामंजस्य की संतुलित समाज में भी संतुलित तो प्रकृति के भी सागे संतुलित और कठिन कठे आप अपनी खेती बाड़ी में भी संतुलित होना जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आप देखियो है गैलडो जो को भक्त ने बी के महीने अपना जो किसान बहन भाई जो अंधा धुंध आंख मीच की आ सोचो ही को नहीं के इन चीज को दुरुपयोग के होगो आगे आने वाले टाइम के महीने है जो इनको परिणाम अपन के तरीके हुआ है जो भुगतना पड़ेगो बी के बारे में न सोचे भी नहीं और ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में और अपना जो किसान बहन भाई बे के खेतों के महीने बेसू मारे केमिकल है जो को छिड़के ला गया और भी को नतीजो हो गयो के बा जमीन है जो की उपजाऊ पर नू और एकदम कमजोर हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई कहने को मतलब वो है के अपा आज संतुलन की बात करा तो संतुलन सो क्या जरूरी है तो भी यही अपा खेती बाड़ी को अपनो काम दाम कर रहे तो बीम घटे घटे आप मान लो जो की परंपरागत जो की अपनी खेती है और बी के सागे मान लो जगह नवाचार होया बम जगह उर्वरक आया बम आपा की एक संतुलन कायम कुन राक्ष क्या अपा परंपरागत खेती है भी एक बार दूर होता हुआ और पैदावार बढ़ाने के चक्कर में बोलो नाज काटने के चक्कर में आपा असंतुलित रूप उर्वरक को जो प्रयोग आपने खेता में करो ब्यू आपने पर्यावरण ने भी नुकसान पहुंचो आपने खेत की मट्टी है ने भी माटी ने बहुत बड़ो नुकसान पहुंची है क्योंकि बार अबार की एक अपनी सरकार भी देखो एक अभियान चला रहे है खेत बचाओ अभियान। खेत बचाने को मतलब वो ये कि भाई जब आप अपना खेत ही बंक मायने झुका असंतुलित उर्वरक गिर रहा भाई जरूरत है भी तो अगर आप गिरा के भाई आपने तो जरूरत जो मान लियो कि बीघे का मायने 2 किलो की जरूरत है यूरिया गिरने की तो आप भी 10 किलो गिर रहे हैं तो वो असंतुलित है और असंतुलन है वो आपने खेत के लिए आ जाऊं आपने खेत की माटी के लिए आ जाऊं और भी खेत में जो को धान जो को पैदा हो सी ने वो बहुत ही ज्यादा मान लियो भी कमाई ने जो को यूरिया आसी और बा यूरिया है जो कि खाद्यान्न के द्वारा आपने मान लियो मिनखा के स्वास्थ्य ने प्रभावित करसी, आपनो जो पशुधन है भी के स्वास्थ्य ने प्रभावित करसी। तो कठिन कठे मान लो जो ज्यादा उर्वरकों का उपयोग है वो आपने खेत के सागे आपने पर्यावरण ने आपने खेती बाड़ी का जगह मित्र कीट ही बने आपने जगह मित्र पक्षी बने और जकी आपनी आबो हवा है आपने खेत को आबो हवा है आबो हम जहाँ मान लो पर्यावरण में सो क्यों जो आ रही है तो बिने नुकसान जो पूछ रही है ने बी के लिए अपन की है कि बात रही आ है कि भाई संतुलित ही अपन उर्वरक गिरना ही भाई आप देखा कि भाई जबकि अनुशंसा हुए ने जिका अपना कृषि महकमे का अधिकारी हुए बाकी अनुशंसा के अनुसार गिरा या फिर आप जिकी माटी अपने खेत की माटी की जिकी जांच करावा आप और भी माटी की जांच को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया अपनों और भी कार्ड के मायने जिका अपना खेती बाड़ी के महकमे का जिका कृषि विशेषज्ञ ही वे अनुशंसा करेंगा भी कार्ड के मायने लिखेंगा कि भाई थारे खेत के मायने ए पोषक तत्व तो ही ए कुन्नी तो ए पोषक तत्व बढ़ाने के लिए थाने ए उर्वरक देना ही या मान लियो ए जका पोषक तत्व ही बे थाने मान लियो देना ही तो भी मायने मान लियो चाहे बा कैल्शियम की मात्रा कम हो या पोटास की मात्रा कम हो या सुपर सल्फेट कम हो चाहे कोई सो भी जिकी जगह उर्वरक जगह मान लियो संतुलित जगह पोषक तत्व फसल हम काम आवे बाकी जी अनुशंसा हुआ भी के हिसाब हुई अपने की है आगे बढ़ने आ नहीं कह खेत में मान लो जिप्सम तो मोकलो है और फिर भी आप खूब जिप्सम दे रहे हैं तो वो भी देखो अच्छी बात को नहीं तो आपने अपनी खेती बाड़ी है बिने देखो जहर मुक्त करनी है क्योंकि आप पुराने भगत में तो जो बात करें तो आपने खेती बाड़ी में जहर हो ही नहीं पूरी की पूरी अपनी खेती ही बा एकदम जैविक खेती ही प्राकृतिक खेती ही और वर्षा आधारित खेती ही खेत के मायने मान लियो आपा मेहनत करता और मेहनत अंग की मेहनत ही आपा ऊंट के हल जोड़ की चौकी पार कर देता भी मायने बोझा जगह खड़ा होया करता पहले तो बोझा ही बहुत जोर का होता अरविंद भाई आदमी के सिर सिर शुदा फोक खड़ा रहता और बन काट काट की और बम जगी छिणवा रेत रुकेड़ी होती बे बंग मायने पूरा पोषक तत्व होता और मोगली बिरखा हो जाती बीम जगो धान पैदा होते ना भी धान की ताकत और आज जगह आप रासायनिक केमिकल का जगह है उर्वरक ही रासायनिक यूरिया है रासायनिक खाद ही रासायनिक कीटनाशक ही ए दे की आप अपनी मट्टी को स्वास्थ्य खराब कर दियो और ब्यू जो धान पैदा हो वो खा की आप अपना मिनख ही बांको भी स्वास्थ्य मान लो खराब हो तो जरिए बार आप देखा के कई इं की जकी बीमारियां ही जकी बार मान लो बहुत ही तेजी मान लो जहाँ फैले हैं आप निगे भी आने लग रही कि भाई कई इं की बीमारी जिसका बूढ़ी आप बीमारियों को नाम गुन लिया करता जी मान लो आप आज बात करा के कैंसर की जी बीमारी है बा आपने मान लियो पुराने भगत के मायने गम में कोई कोई आदमी के जी बीमारी हो जाती तो बड़ो अचुम्मो होया करतो के फलाने के मान लियो आ बीमारी होगी और आज अमूमन आप देखा तो रोगी जिका कैंसर का बढ़ता जा रहे हैं भी के पीछे कारण की है कारण वही है कि भाई आपनो जो खाद्यान्न है वो के है कि सुरक्षित कौन रहे हो बिक मायने आप जगह ए रासायनिक जगी खाद ही रासायनिक जगह कीटनाशक ही रासायनिक जगी दवाया ही बे दे दे की अब मान लो कई बार तो आप देखने न भी मिले के कई मान लो आदमी आप सगला की तो बात कौन करा अपन कई बेलना के सीधा इंजेक्शन भी लगावे हैं जबकि सब्जी मान लो इंजेक्शन पैदा करी जाएगी दवाया दे दे की पैदा करी जाएगी तो बा आपको असर तो छोड़े ही तो आपने यहाँ नहीं करना है आपने की है कि जैविक तरीकों ही मान लो खेती बाड़ी करनी है और अरविंद भाई बात आ है कि जैविक जे अरविंद भाई आपके खेत में एक बीघो के महीने या दो बीघो के महीने जे जैविक तरीकों सब्जी पैदा कर रहे है तो लोग भटे पूग जैसी खेत के महीने ही और वे भटो जाकी खुद मान लो सब्जी लिया सी क्योंकि लोग और भाव भी बढ़िया देसी तो लोग पीछे का नहीं बिल्कुल ही कौन देख रहा तो आपा ने की है कि देखो किसान है ना अरविंद भाई किसान पर मोटी जिम्मेवारी है किसान ने अंदाता बताई गई है तो बार किसान है बिन मान लो आपकी खेती बाड़ी है भी के लिहाज बिन मान लो परंपरागत रूप तैयार करनी है
1: भाई किसान ने अंदाता कही है तो बिक ऊपर आपा अमल भी करा के अंदाता को काम है जो केवल नाज उत्पादन को नहीं करना शुद्ध नाज है जो उत्पादन है अगर जे आप करा जब तो देखो आप अंदाता नहीं तो आप जान बिना को केमिकल छिड़की और रोग जो ज्यादा बढ़े वो है जो अगर जे आप कोई खाने देवांगा तो देखो के बीऊ तो उल्टी को आपा जो कर्म जो कर रहा ने वो बेकार हो सी। तो आपा ने सही तरीका हूं चोखो शुद्ध नाज जो है बी की पैदावार है जकी बढ़ानी है

0: का अपनी जी की खेत की माटी है ने बस ही रहेगी। और आपने एक किलो छिड़कने की है जी की बात कहने बैठा, आप अगर जे 20 किलो छिड़क रहा तो देखो के अति हर चीज की माड़ी हो
1: भाई। कह करेंगे अति तो सगले ही वरजेड़ी है भाई, अति तो क्या मिनी करनी चाहिए। तो कहने को मतलब वही है कि भाई आपने आपनो जो को खेती बाड़ी को काम दाम है भी कमाई ने आपने आपनो खेत ने बिना एकदम प्राकृतिक रूपों जैविक तरीके मान लो आपने भी कमाई ने फसल अगर लेंगा तो एक दो बार उसके जो आपने खेत ने कई बार किए कि अब ज्यादा मान लो आप रासायनिक खाद दे रहे हैं या उर्वरक दे रहे हैं या जगह रासायनिक कीटनाशक को प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे की है कि अपनी जमीन अब नशीली हुई है बिना आदत भी पड़ गई बांगी। पर उसके एक दो साल के बाद में जो मान लो आप परंपरागत तरीकों से गोबर की खाद है जीवाश्म खाद ही वे देखी और आपनी मान लो जमीन है पाछी भी हिसाब में तैयार हो जाएगी ने तो भी के बाद में की है कि जकी जैविक जकी खेती है बा अरविंद भाई सस्ती है बा महंगी को नहीं, क्योंकि जकी आप रासायनिक जकी खेती कर रहे हैं बा बहुत महंगी है और जका ए महंगा उर्वरक ही ने आंकी निर्भरता ने देखा ना आप तो कई बार आप देखा कि फसलों को जो टेम हो भी कमाई ने की है कि किसान बहन भाई बाकी लाइन लग जाए है खाद के लिए और के लिए यूरिया के लिए तो आप जो अनावश्यक रूप की ध्यान है आ चीज भी उनकी है कि एक तो आपने खेत को मान लो उपजाऊपन है ना वो भी कम हो है भी आप खूब सारो देंगे। अब आप देखने लाग रहे हैं कि खेत के मायने खरपतवार हटाने के लिए आप कसियो लेके अरे निनाण काटा है खूट खूट को निनाण काटा जद की है नाच बढ़िया रे। पर आप देखने लाग रहे हैं कि आजकल अपना जगह किसान बहन भाई ही बे खेत बाणो पहली ही खरपतवार नहीं उगे भी की स्प्रे कर रहे हैं तो आ देखो बहुत ही खेती बाड़ी के लिहाज कोई अच्छी बात को नहीं है, क्योंकि आज की है कि अपनी खेती बाड़ी पर भी बाजार हावी हो रही है। क्योंकि आप बाजार के महीने जावा जब भांत भांत की जगह कीटनाशक ही बे तैयार कर करके बे बाजार के महीने मेल लागे ही और बंगो बे भ्रामक प्रचार भी खूब सारो करे हैं और फिर किसान कठेन कठे भी चकाचौंध में आकी और बंगो इस्तेमाल करे और बे महंगा भी बहुत हुए और फिर धीरे धीरे मान लियो आपनो खेत है बिना भी बिया की उर्वरक की और की बंकी वह एक लत सी लग जाए जी मान लियो कई आदमी की एक नसो नसो करने लग जाए तो बन लत पड़ जाए बिया भी वह हुए। तो कहने को मतलब आपने की है आपने खेत की जी की जमीन है बिना नशीली गुण बनानी और आपने भी देखो मिन खाना भी नशो नहीं करना चाहिए, नशो तो क्या करे ना के नाश को द्वार है तो आपने ने तो आपने नशो करना ने अपनी जमीन ने नशो करानो है अपन तो एकदम जैविक परंपरागत जी खेती है बा अपनानी है और भी पर अपनी सरकार भी देखो ध्यान है बे देन लाग रही प्रचार प्रसार भी खूब हो रही है संगोष्ठियां भी आयोजित हो रही जगह जगह गाँव गवाई ने जा जा की मान लियो प्राकृतिक जी की खेती बाड़ी है भी की भी को मान लियो प्रचार प्रसार हो रही है किसान बहन भाई ही बने भाई के बारे में जानकारी भी देने लाग रही। तो आपने ये सगली बात ही अगी गांठ बांध लेनी है और अरविंद भाई बतलावन तो अपनी जारी रहसी पण थोड़ो मान लियो कोई अब मनोरंजन को जो भगत हो तो आप एक लोक भजन है संध्या को जो भगत होने लाग रहे है तो महाराज गणेश जी महाराज को एक आप भजन है वो अपना जगह तुला किसान बहन भाई मैंने सुनावा।
2: ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम् कपित्थ जम्बूफल चारुवक्षणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: तो अभी आपां ए संदेश सुनिया और संदेश पहली आपां सांतरो सो लोक वजन महाराज गजानन आओ जी मारी सभा में रंगे बरसाओ जी। मांगीलाल कथगर साथें की आवाज के महीने और सुरीलो सो मीठो भजन है आपां सुनियो और अपना इतुला किसान बहन भाई सुनियो। जरूर आपां उम्मीद करा के अपना जगह इतुला किसान बहन भाई ही बंके वो लोग भजन है वो चोखो दाय आयो सी और आपां कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा। तो बात रही आपां मान लो खेतीबाड़ी की करा, तो खेतीबाड़ी के मायने की है कि अरविंद भाई अपनी बार सरकार है ने वे भी आ चाहें कि किसान है ने किसान की मान लो जिकी आय है बा धीरे धीरे बढ़े, किसान को जीवन स्तर है वो बहुत बढ़िया होवे और जीवन स्तर तो जद ही बढ़िया होगो जब किसान के आय होएगी, आमदनी चौखी होएगी, खेत में उत्पादन बढ़िया होगो, तो बी के लिए कि है कि सरकार भी बांध बांध की योजनाओं भी चला रखी बी के सागे सागे आप भी अपना जगह इतुला किसान बहन भाई बने कहना चाहूँगा कि भाई आपनों जो खेत बावान है भी खेत के मायने आपने की है कि जी मान लो खेत की रुखाड़ी तो अपन करनी पड़े और भी रुखा

0: हड़ी हड़ी जगह जहाँ मान लो खेत की सीम है, खेत की जकी मेड़ है, और बिक महीने जे मान लो आप हरी बाड़ तैयार करा, भाई बाड़ तो आप करा ही कांटेदार बाड़ करा। आजकल तो तारबंदी भी चल रही, तारबंदी की योजना मान लो सरकार की योजना भी चल रही है तारबंदी के लिए, तो किसाना ने भी के लिए मान लो भी अनुदान भी मिल रही है। तो आप जे तारबंदी भी कर रखी है ना अपनी मान लो खेत के, तो बिके सागे भी आप हरी बाड़ तैयार कर सका। और हरी हरी जी बाड़ है अरविंद भाई तैयार करना अपने बहुत ही मोटा फायदा ही मोटी उपयोगिता है भी। उपयोगिता की जी बात करा अपा, तो जिया मान लो पहली बात तो है कि भाई आपनों जो को खेत है ना भी के चारों मेर मान लियो तारबंदी भी करेड़ी है तो आप हरी बाड़ लगा सका, तारबंदी नहीं करेड़ी है तो आप हरी बाड़ लगा ले जाने तो बढ़िया जाडी आप मान लियो बाड़ लगा लेगा तो आपने मान लियो अपने खेत की सुरक्षा हो जाएगी। और भी खेत की सुरक्षा के मायने जहाँ मान लो हरी बाड़ की जो बात करा, तो जहाँ एक आपने कांटेदार जगह पौधा हुए, कांटेदार पौधा के मायने मान लियो फल का भी हुए और सब्जी का भी हुए, तो इन मायने जहाँ मान लियो आप बे पौधा लगा सका, बांके सागे मान लियो आप एक रेसो बना सका। जहाँ मान लियो आप भी मायने मान लियो 30% आपने हेठे होने वाला जगह पौधा हुए, जहाँ मान लियो जगह के मायने नीम हो जियो, नीम अपना औषधीय पौधों भी है, वह भी मेड़ में बीच में लगा सका। और जहाँ छायादार पौधा ही वह भी का बीच बीच में लगा सका, आड़ू का जगह पौधा है वह बीच बीच में लगा सका। बांके बीच बीच में जहाँ आप करुंदा लगा दिया, करुंदो बहुत ही आसानी लगने वालों झाड़ है एक तरह को, भी मैंने आप झाड़ी लगा दी। बेर जकी बेर हुए अपना जगह आप बोलिया करें ना बोले आ हड़ी वाले बेर की झाड़ी है, आ सामान्य बेर की झाड़ी है, तो वह भी देखो कांटेदार झाड़ो में भाई आप लगा सका। हाँ करुंदो, करुंदो तो मान लियो एक तो बाढ़ बहुत जोर की हो जाए करुंदे की, करुंदो जी आप सीयू में लगा दी और भी के बाद में दोनों कने भी कटाई कर दी तो एकदम शानदार मान लियो सुंदर भी लाग सी और भी मां की है कि कोई टिप भी गुंस के। और जब बगत आसी ने भी के मान लियो फल लागने को करुंदा लागने को बगत आसी तो करुंदा घना ही लाग सी। अब वो ही करुंदो बाजार के मायने 60 रुपया किलो मान लियो मिलन लाग रही है, तो एक तो बाढ़ होगी अपनी हरी बाढ़ होगी और एक आपने आय शुरू होगी, भाई आप करुंदा तोड़ की आप खुद सब्जी बनाई तो अपना फायदो है और बहुत सारा मोकला लग गया तो आप बाजार में बेच भी सका।
1: भाई करुंदा है और बाढ़ करेलिया जगह मैंने मैं भी देखो के एक औषधीय सब्जी के रूप के मैंने और खूब कारगरी, तो बाकी भी आप के बाढ़ कर सका। कोई है जो को दरखत हो यार बिको ऊपर है जो को चढ़ाए जा, या फिर जिया थे बात करी तारबंदी की, तो तारबंदी के ऊपर भी बाढ़ करेले की जिकी बेल है जिकी आसानी चढ़ जा।
0: बिल्कुल।
1: और अगर जे बाढ़ है जिकी आप जाडी और सगड़ी हरी कर लिया, तो देखो के सर्दी का वक्त के मायने उत्तराधीर अथुनी आवाज की सर्द एकदम ठुटुरन वाली सी और भयंकर सर्दी के महीने आपने खेत के महीने जो भाई ज्यादा और नुकसान होने की जिसकी संभावना हो बिन भी देखो के बाढ़ रोक के
0: भाई कहने को मतलब वो है कि मौसम की जिसकी मार हो ने अपनी फसलों पर ब्यू भी भारी बाढ़ आपने मान लो फायदो दे अपनी फसल ने बचाओ है।
1: और बिक सक सके बाहर के मौसम की जिसकी आप बात करा तो भी देखो के भाई खेत के महीने है जो अपना जो मित्र कीट जिका हुए ने बन भी देखो के भाई आज की जिया बात करा आज बेसुमार तावड़ो बेसुमार तावड़े के मैंने आपा ही बाज बाज की है जो को छाया पकड़ा ठंडी छाया
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वह जगह जीव ही बन भी कठिन कटे है जो को ठंडी छाया को जो को आसरो है ने वो मिले
0: भाई वो जरूरी भी अरविंद भाई, क्योंकि आपने इसकी खेती बाड़ी है ना बी के लिहाज ऊंचा मान लो एक तो अपना मित्र पक्षी हुए बन ने शरण स्थली मिल गई, चारों मेर खेत के हरी बाढ़ है तो वे मित्र पक्षी भी बाढ़ में रह सी, तो खेत में जगह कीट ही लट्टी और ही वे बने खाले सी तो वे अपना मित्र पक्षी। और बी के सागे की है जगह कई कीट हुए ने जगह अपनी फसल के लिए बहुत महत्व हुए जहाँ तितली हुए यही जगह वे परागण करने वाला है ना फसलों के महीने वे भी के अंदर रह सी, तो वे भी मान लियो अपनी जगह फसल के लिए मान लियो भी ने उत्पादन के महीने बंको बड़ो रोल रहे बहुत बड़ी मान लियो बांकी भी भूमिका रहे तो वे भी के महीने रह सी। और आपने चारों मेर जब खेत के हरी बाड़ लागेड़ी रह सी तो खेत में जो को पर्यावरण है भी वो भी देखो शुद्ध रह सी। तो हरी बाड़ का तो फायदा ही फायदा ही, और अपन के लगानी भी।

0: जी, क्योंकि बा आप खेत में लगाऊंगा तो ब्यू एक आय भी आपने शुरू हो जाएगी और आपने खेत को जो मान लो उत्पादन की जगह क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी। और एक सागे जी मान लो आप बीच बीच में जगह फलदार जगह आप बात करें, अभी जहाँ करुंदो लगा दियो, कटे बीच में नार लगा दियो, कटे झाड़ी लगा दी है, बीच में कटे छायादार लगा दिया, तो बाकी ऊंची नीची एक बाड़ बन जाएगी बढ़िया सी है। अब जहाँ ऊंचा अपना पौधा ही तो जबकि दूर उचाल की कई बार आप कहा बोले फसल ने झोलो मार दियोगे। तो जब खेत के चारों मेर बड़ा बड़ा बे रूख लागेड़ा होने जद जकी बे जो लेगो मतलब वही है कि अरविंद भाई गर्म जगी बा हवा चले कुछ समय के लिए, मौसम है ने मौसम को सिस्टम होए वो। अब जिया मान लो उन्याला को बगत है तो उन्याला में ताती लू चाल नहीं, पण जो लो कई बार की होए कि जिया मान लो आपने जद नाज पकाओ पर आवे ने बी टेम के आ थोड़ा ना कुरी कूणे मुजगी पून चाल की आवे ने सरादांग महीना पके आगरा है, तो बी कमाई ने जुकी बा पून भी बगत के बा ताती भी हो जहरीली टाइप की हो बा, तो बा फसला न सीधे तो बाऊ भी की है कि जब बा हरी बाढ़ बनेड़ी होगी ना तो जिका मान लो बे जकी ताती जकी पून आवेगी जकी जहरीली हवा भी ना भी रोकेगी तो अपनी फसल ही बे प्रभावित को नहीं होगी भी, तो फसलों को बचाव भी हो जाएगो और एक किसान के लिए बढ़िया आय भी हो जाएगी।
1: और बी के सगे सगे अगर जे हरी बाढ़ हुए तो देखो के बिंगा पत्ता जड़े और होवे ब्यू के शुद्ध जकी देसी खात है ने
0: जैविक खाद भी
1: जैविक
0: मिलेगी।
1: जकी खात है वह भी मिलेगी। तो आज की हरी बाड़ है इंगा फायदा ही फायदा ही कोई तरीके को है जो किसान बहन भाई के खुद के और आपके खेत के लिए कोई नुकसानदायक को नहीं है, फायदा ही है। चाहे कोई सोई मौसम हो कोई है जो आप फसल बाओ आ है जो आपने खुद के लिए और आपने खेत की माटी के लिए और खेती के लिए जिका सहायक जिकी चीज होवे जिकी लाभदायक होवे बं के लिए हरी बाड़ है जिकी बहुत ही जरूरी है। और आप उम्मीद करा कि अपना किसान बहन भाई जिका जरूर ई बात पर अमल करें कि भाई हरी बाड़ कह दियो चाहे सीव कह दियो। आपा देखा के खेतां के महीने खूब है जिको चोड़ी चोड़ी जिकी म्याल जिकी ने बे आज भी देखो देखने मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और जिका किसान मैन भाई आपके खेत की सीवा की जिकी म्याल जिकी है ने बा देखो के जठे जठे जाडी होशी ने
0: बाबी जिकी सीम है बाबी आपनी एक हरी बाड़ी है भी कमाई ने भी किए हुए के अरविंद भाई भी जिया मान लो अपा जे प्रकृति के रूप में उगेड़ी जिकी बाड़ की बात कराने तो भी कमाई ने देखो इंगून हुए आपने बाबी बाड़ में लगेड़ी होए बी कमाई ने मान लियो मुरालो होए अपने है मुरालो बहुत जोर की हरी बाड़ में ही होए है बी कमाई ने अरनो होए है वो भी बीम होए। और बात इतनी जाडी सी होए के बा एक तो बाड़ बन जा बी की मान लियो पशु ही बे बी कमाई घुस कौन पाऊ है मुराल ना की जद बाड़ सी बनेड़ी होए ने अरविंद भाई भी कमाएगी कि एक सांप ही टिप कौन सके बी मान लियो जी इंगूणी उगी मुरालो उगियो अरना उगिया अड़ाई उगी है तो बाकी जगी बा बाढ़ प्राकृतिक रूप में बनेड़ी हुए बा भी खेत ना बड़ी सुरक्षा दे और मित्र जगह पक्षी ही मित्र कीट ही भी कमाई ना आराम रह सके हैं तो बे प्रकृति कुदरती रूप की जगी म्याल ही बे भी होती। पर अब धीरे धीरे की है के मिनक है ने आप बात कर रहे ने के बा दोहा नाली तो धीरे धीरे मान लियो बने खत्म कर रहे हैं तो वो गठन घटक की है के खेत का नुकसान है और अपना जगह मित्र पक्षी मित्र कीट ही बांके भी नुकसान है। तो बात भी अपा हरी बाड़ की करण लाग रहा और बतलावन तो अपनी जारी रहसी पर एक लोक रचना ने वो अपना हितुला किसान बहन भाई मन सुनाने ने मन कर रहे है तो एक लोक रचना और सुना दिया तो सुनो सा लोक रचना।

किसान बहन भाया, अभी अपा सांतरी सी लोक रचना परदेसी मामा नानू राम भोपार साथे की आवाज को मैंने सुनी जरूर थारे दाय आई हो सी। और अरुण भाई कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा तो बातरी करा अपा के अपनी जी की सरकार ही बे भांत भांत की जी की योजनावा ही बे चला रखी। और बामा भी मान लो कई योजनावा ही बे सीधी मान लो आपा ने लाभ दें। बामा एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इंक मायने क्यों है के जकी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है आके है के बिजलियों संबंधित है। तो एक मायने क्यों है के आपनी जकी सरकार है बा बहुत ही बढ़िया जो काम है वो करी है। और देश के मायने मतलब आपना जका लोगों की क्षति है बांक के ऊपर है। यानी इके लिए कोई नए तो कोई जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ी है, नए घड़े कोई पेड़ पौधों काटने की जरूरत पड़ी। बहुत ही बढ़िया ठावड़ी योजना है। और एक महीने सब्सिडी भी है सरकार है बा आपा ने मान लियो एक महीने सब्सिडी भी दे। तो एक महीने की है कि आपा मान लियो जी सोलर की जी प्लेट आवे बे आपा लगा की आपने ज्या घर की छात है बी के ऊपर आपा लगा सका। और बिन छत के ऊपर लगा की बिजली के है बी को उत्पादन है वो सूरज की रोशनी है, सूरज की जी धूप है घनी पड़े है। तो ब्यू की है बा बिजली जी तैयार हो बा सीधी मान लियो ग्रिड के मायने जावे और बे यूनिट अपने खाते के मायने जुड़ता जावे। तो कहने को मतलब वो है कि बिजली अपन एक तरह निःशुल्क होगी। और एज की मान लियो जो प्रधानमंत्री सूर्य अगर योजना है इम अपन लाभ ले सियां तो एक महीने की है अपन सरकार है बा सब्सिडी भी देसी। क्योंकि एक महीने मान लियो जो वो एक किलोवाट को या दो किलोवाट को या तीन किलोवाट को एक हिसाब मान लियो जो कि आज की एक महीने मान लियो प्लेटा ही बे आपा लगास कहा। और एक महीना सरकार है बा अधिकतम जो आपा सब्सिडी की बात करें तो 78,000 रुपया है बा एक महीना सरकार है बा आपा ने सब्सिडी भी दे। तो जो को पीएम सूर्य घर योजना है एक महीने मान लियो आपा ने अलग उनकी करने की जरूरत ही नहीं। भी आपा आपनो घर है घर में आपा छत के ऊपर बे प्लेटा लगा ली और भी के बाद में भी जितनी भी यूनिट बन सी बे अपनी भेड़ी होती जा रही। और आपा ने जी की बिजली मिल ली है मान लियो सरकार उन जी बिजली मिल ली है आप बिजली ले रहे हैं तो बंग महीने जी मान लियो अब आपा बिजली की मान लियो एक दिन में दो यूनिट खपाई और ए आपा जी प्लेट लगाई ही और आपा जी पांच यूनिट मान लियो बिजली बना ली तो तीन यूनिट आपने के ना बच गई भाई आपा तो दो ही वाली। तो बहुत ही जोरदार जकी योजना है बा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। इको लाभ है वो अपना जगह तुरा किसान बहन भाई ही बने लेनो भी चाहिए क्योंकि मान लो कोई भी सरकार की

योजना है ने बिक महीने की है के आज की सूर्य ग्रह की योजना एक माने बिजली अपन मुफ्त मिलने लग रही है भाई। आपनों तो टक्को पिसो लगनी गुण लग रही हो भाई। अपना एक बार मान लियो अपना पिसा लगाया और बिक महीने सरकार अपना सब्सिडी और दे रही है और आज की योजना है 15 फरवरी 2024 ने अपना जगह प्रधानमंत्री ही देश का नरेंद्र जी मोदी भाई को शुभारंभ करो और ई योजना ने मान लियो घर घर के महीने छतों के ऊपर जिकी सोर पैनल ही ने बे लाग जा सब्सिडी गवर्नमेंट भी दे रही है। और आपने की है कि जी मान लियो आपने देश में लगभग मान लियो 1 करोड़ जगह घर ही देश का बान ने मान लियो इको लाभ मिलने की उम्मीद है। आप देखा भी यहाँ गांव गांव के महीने छतों के ऊपर देखो प्लेटा लागन लाग रही दबा दब लोग लगान लाग रहे हैं क्योंकि एक महीना अपन सीधो फायदो मिलने लग रही है एकदम। मान लो जो जिकन क्या करे ना कि डायरेक्ट लाभ है वो लाभ है तो बाहर मान लो बिजली है ना बी के लिए मान लो अपन जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इको जो लाभ है वो अपन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि योजनाओं को तो बहुत ही अरविंद भाई सरकार की इतनी योजनाएं ही के मान लो बहुत सारी योजना है बे मान लो चाहे सीधी मान लो चाहे आवास बनाने की योजना ले लो चाहे बिजली की योजना ले लो चाहे सिंचाई की योजना ले लो चाहे फसल की बीमा की योजना ले लो है किसान ने सीधो लाभ मिलने लग रहे है। बार अपनी जो की सरकार है ने बा आपका 12 साल होने पर जो मान लो बिगो जो प्रचार प्रसार है बिन भी खेती बाड़ी है ने बिन बहुत ज्यादा मान लो तवज्जो अपना जगह देश का प्रधानमंत्री ही अपनी जी की सरकार है अपनी केंद्र सरकार है बिन लेलडे भगत में तो देखो एक खेती बाड़ी के महीने बहुत बढ़िया नवाचार करने के लिए अपना प्रधानमंत्री अपन सम्मानित भी कर गया। तो कहने को मतलब वही है कि भाई सरकार है बा भांत भांत की जी की योजनावा ही बा लिया कि अपना जगह किसान बहन भाई ही बांको भी भलो होने लग रही है और भी कैसा गया अपना जगह देश का मिनक ही ने मन भी जो को मान लो लाभ मिलने लग रही है। तो अभी जिकी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है जिकी की आप चर्चा करने लग रहे हैं आ बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और सीधी सीधी आपा ने मान लो प्रभावित करे क्योंकि बिजली अपन रोज की चाहिए अरविंद भाई बिजली बिना काम कौन चले क्योंकि आजकल की है कि चाहिए आप डाणी हूं डाणी देख लियो और चाहे गांव देख लियो और चाहे छोटो गांव देख लियो और चाहे बड़ो देख लियो चाहे शहर देख लियो बिजली बिना काम चले ही नहीं क्योंकि सगला काम रुक जाए। अब भी आप गांव का महीने भी जब देखा ना कई बार की है कि बिजली नहीं आवे ना जद की है कि आजकल बिलोना कौन बिलोए है पहले तो के हाथों बिलो लेता आजकल ऐसे मशीन आ रही बिजली में चलने वाली। तो बिजली को महत्व है वो जू जू बढ़ते जा रहे है तो बिजली की अपन मान लो जरूरत भी ज्यादा हो रही है। तो आ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इको जरूर अपना जगह तुला किसान बहन भाई ही बने लाभ है वो लेनो चीज है भाई मान लो लाभ लेंगा ने यदि देखो फायदो होगा और चर्चा अपनी जारी रहसी। एक छोटी सी लोक रचना और अपना जगह तुला किसान बहन भाई मैंने सुना दिया तो सुनो सा लोक रचना।

0: सांतरीसी लोक रचना फोटूडो डगला राम और साथी की आवाज में आप सुनी और बतलावन करने तो घणो ही मन करे हो पण भगत के बंदेड़ा। तो आज के कार्यक्रम को भगत अठाई तनी और मिलने तनी भाई देवन है
1: और भाई अरविंद ने देव सीख करा
0: राम राम, राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

दिल तो पागल है। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार उत्तम सिंह।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत। गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित।

सिलसिला है प्यार का। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। शब्द रचना थी समीर की, संगीतकार थे जतिन ललित। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें कुमार सानू और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार जतिन ललित।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई

अंतरालों के बाद कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजें आपके रेडियो सेट पर। फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या।

हर दिल जो प्यार करेगा। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुना। गीतकार थे समीर, संगीतकार अनु मलिक। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, आकाशवाणी चूरू केंद्र से।

सोनू निगम और साथियों को श्रोता सुन रहे थे बादल फिल्म में। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोता कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को फिल्म दाग द फायर में। इस गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 का प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें

0: अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी पत्नी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है।

0: ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है. और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं.
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party.

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब श्रोता सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगती, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि

0: जहाँ पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
0: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें, इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ भारत में। आज गांव-गांव में वही

0: सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के, और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है, बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश, और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यदि कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा

0: ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल जो हमारे यहाँ आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान सर्वोच्च बलिदान दिया उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई जो भवने थे भवन थे या बिल्डिंग थे उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
0: बिल्कुल विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी

0: प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

अभी श्रोता सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के ठीक 10 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है बैरागी।

अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुना, राग बैरागी। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मिताली सिंह की आवाज में गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतरालों के पश्चात श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुन रहे हैं मिताली सिंह को।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में मिताली सिंह की आवाज में गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।